0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: तू को जा मन को जा।
2: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस बाय उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 0771529779 और 0755253820। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
3: Planning a wedding, reception or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
4: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
5: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
4: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
6: ओए खुशियां मना

0: एप्लीकेशंस भी कर देने।
1: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे रابطہ करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी वो भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनदे पे हो अपने दिलानी आवाज,
7: फजा 97.1।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level

0: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
1: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज।

0: QS.
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी.
2: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK Events और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट. तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंघम, NG5 1EL.
2: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में. सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ. लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक. बकरा मुबारक 2026, ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ. डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250. बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station. That plays
9: foot tapping music.
10: Fazaa 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने.
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
11: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का.
13: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
14: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
13: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
14: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
13: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
15: You are listening 97.1 FM.
16: You are safe. We are playing
17: Fazan 97.1 FM.
18: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा. मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा. इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
19: 97.1 FM.
15: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਬਾਤ, ਦਿਲਾਨੀ ਬਾਤ
7: 97.1
8: This is a public service announcement.
9: The station that plays foot tapping music.
7: 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: to be.
1: This is a public service announcement.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
10: You are listening 97.1 FM.

0: स्टोन्स।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK Events और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May 6 PM टिल लेट, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंघम, NG5 1EL।
2: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस बाय उस्ताद रफाकत अली खान, 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026, ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station that plays
9: foot tapping music.
10: Faza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
12: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service.
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are saying. We are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: यही है आपका।
11: You are listening 97.1 FM.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼
7: 97.1
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: 97.1 FM.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। रेडियो फजा 97.1 FM जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। चलिए तो लिसनर, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम अब से लेकर ठीक दो घंटे तक, यानी कि अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ और हमारा और आपका साथ रहेगा इसी तरह से बरकरार। चलिए तो लिसनर्स, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी भी पार्टिसिपेशन हो। तो किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में, चलिए चल के आपको बताती हूँ। चलिए तो लिसनर्स, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे अपने ख्यालात, अपने जज्बात, आपके आज के क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करने का सोच रहे हैं, वो सभी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना नाम, कोई प्यारा सा पैगाम भी लिखकर हमें भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को बासानी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। करना आपने बस इतना है कि आपने सिंपली अपने फोन में जाना है, जाकर अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपने जाना है एप्पल स्टोर, अदरवाइज एंड्रॉयड यूजर हैं तो जाना है आपने गूगल स्टोर। वहां जाकर आपने सर्च बार में सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर की आइकन की एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी। जी हाँ, यही है हमारे रेडियो फजा 97.1 FM की एप्लीकेशन। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप रहें हमारे साथ कनेक्टेड और आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें। जी तो लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपने मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तकरीबन अभी तक तो आपने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज नहीं किया या आप सोच रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए या फिर आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, सो चलिए मिलकर करते हैं अपने इस खूबसूरत से दिन का स्टार्टअप। सो दिन के साथ साथ शो का स्टार्टअप भी मैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ करूंगी। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और ट्रैक से वापसी पर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। ठीक है, तो लिसनर्स, उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, एक बार फिर से मैंने सोचा कि अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दिया जाए। जी, तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिन से मिसिंग थी, तो उसके पीछे कुछ मसरूफियत थी, कुछ पर्सनल रीजंस थे, बट नाउ अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आज से हम वापस से गपशप करेंगे और उसी तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से हम पहले करते थे। जैसे कि हम अपना हर शो, कोई भी शो हो, उसको स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव वाइब से, एक पॉजिटिव एनर्जी से और एक पॉजिटिव कोट से। तो इसीलिए आज के लिए भी मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसा ही पॉजिटिव सा कोट जो कि आपके ना सिर्फ दिन को बदलेगा बल्कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगा।

सो बेसिकली ये बात आपको सुनने में काफी ज्यादा सिंपल सी लग रही होगी, बट इन रियलिटी ये बात बहुत डीप है. सो बेसिकली आज के हमारे कोट का मतलब ये है कि वी वेस्ट सो मच ऑफ अवर प्रिकॉशियस एनर्जी ट्राइंग टू फिक्स पीपल, ट्राइंग टू चेंज देयर टॉक्सिक हैबिट्स और ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टूड आवर वैल्यू. वी थिंक इफ आई लव देम अ लिटिल मोर और इफ आई ट्राई अ लिटिल हार्डर दे विल चेंज. बट द हार्डेस्ट ट्रूथ इज के जितने भी आपके इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. सो आपको जो मेन थिंग है, जो मेन फोकस आपका होना चाहिए कि बी केयरफुल चूज योर सर्कल, बी केयरफुल चूज द पीपल दैट अराउंड यू, क्योंकि आपका जो सर्कल है, आपकी सोसाइटी है, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी रियल लाइफ में कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं. क्योंकि कहा जाता है ना कि इंसान को पहचाना जाता है उसकी कंपनी से. अगर इंसान की कंपनी अच्छी होगी तो लोग उसके बारे में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव परसेप्शन कायम कर लेते हैं.

हाँ तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके इर्द गिर्द की चीजें हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं बाज़ूकात पॉजिटिवली, बाज़ूकात नेगेटिवली, अगर आपका सर्कल सपोर्टिव होगा, आपका सर्कल जिन्हें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग होगा, ट्रस्टवर्थी होगा, तो आई थिंक ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगा और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो सर्कल है, आपकी जो सोसाइटी है या जिन लोगों में आपका उठना बैठना है, वो लोग पॉजिटिव नहीं होंगे बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे आपको, तनकीद करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में, तो आप फील करोगे कि यू फील डम, यू फील सेल्फ इस्टीम लो, आपका सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकोगे। जी तो लिसनर्स, हमारा आज का कोट ऑफ द डे यही कहता है कि आप पॉजिटिव रहें, ना सिर्फ पॉजिटिव रहें बल्कि केयरफुली अपना सर्कल चूज करें, इस चीज पे खास ध्यान दें कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है, क्योंकि आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते बट आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं कि आप किन लोगों में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। कोशिश करें कि कभी भी बेयर मिनिमम में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि बाजू का जब हम क्या करते हैं कि हम बेयर मिनिमम में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग हमें फिर उसी तरह से ट्रीट करते हैं। सो ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ डीवा, खुद को अच्छा ट्रीट करें और प्लस उन लोगों के साथ रहें जो आपकी हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें। लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका जो अच्छा सर्कल होता है, आपके जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। सो इस खूबसूरत से बात के साथ मैंने सोचा आज का हम अपना शो स्टार्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कोट अच्छा लगा होगा और हो सकता है कि ये कोट आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आपको अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस लाने चाहिए। जी तो लिस्टर्स, इस बारे में आपका क्या कहना है, अपने ख्यालात का इजहार करिए मुझसे 01157100971 के जरिए से, और बताइए कि क्या आपका सर्कल सपोर्टिव है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिए। चलिए लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है शो में एक अदद म्यूजिकल ट्रैक को शामिल करने का। आई थिंक काफी गपशप तो हो रही है और इसी तरह से होती रहेगी, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं अब से लेकर ठीक दो घंटे तक साथ। सो स्टे ट्यून विद अस और अब सुनते हैं कोई खूबसूरत सा ट्रैक। तो जी लिसनर्स, ये जो ट्रैक मैं शो में शामिल करने जा रही हूँ, ये हमारी एक लिसनर की फरमाइश पर शो में शामिल किया जा रहा है। सो मेरी उन फेवरेट लिसनर का कहना ये था कि आप इस सॉन्ग को अपने आज के शो में शामिल करें। सो आप तमाम तर लिसनर्स की रिक्वेस्ट को मैं ज़रूर फुलफिल करूंगी, आपकी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस

जी हाँ, वेलकम बैक लिसनर्स। आप सुन रहे हैं आपकी फेवरेट होस्ट ज़ैनब फातिमा को, और आई थिंक आपने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। सो बेसिकली ये ट्रैक हमारे एक लिसनर की फरमाइश थी और उनका कहना था कि प्लीज़ इस ट्रैक को शो में शामिल किया जाए। सो मैं आपको बताती चलती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट हमने फुलफ़िल कर दी है, और इसी तरह अगर बाकी सब में से, आप सभी लिस्टर्स में से किसी और की भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, सो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाएगा। किस तरह से शेयर करेंगे? 01157100971 इस नंबर के ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं और किस तरह के ट्रैक्स आप सुनना चाहते हैं। तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो द डीवा डायलॉग के उस सेगमेंट का जिसको रहता है हमारी फीमेल्स को बेसब्री से इंतजार। जैसा कि हमारे शो का पहला सेगमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग, जिसपे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने तमाम तर लिसनर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करूँ, थोड़ा सा इनकरेज करूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, पॉजिटिविटी आए और लाइफ मज़ीद स्मूथ हो जाए। सो इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मज़ेदार से खानों की जिनकी भी आपको

सी तो लिसनर्स, कहा जाता है कि अ ट्रू डीवा लव्स हर फूड, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती है। हर एक इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होते हैं, डेली बेसिस पे काफी कुछ करने को होता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपीज जो बहुत ही ज्यादा चटपट हों, बहुत ज्यादा सिंपल हों, इजी हों, रेडी टू मेड हों, ताकि जब आप उन रेसिपीज को बनाएं तो आपको ज्यादा दिक्कत ना करनी पड़े, प्लस आपकी किचन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए और आपके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि ये रेसिपीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जी तो लिसनर्स, तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक रेडी कर लें, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की जो फर्स्ट रेसिपी है, द मिडनाइट मग केक। क्योंकि स्वीट तो सभी को पसंद होता है एंड आई थिंक घर में छोटे हों या बड़े हों मीठा सभी शौक से खाते हैं। सो इंग्रेडिएंट आप सबसे शेयर करती हूँ, लेकिन अभी एक आप तब तक अपनी कॉपी पेंसिल नोट कर लें, तब तक मैं इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करती हूँ।

जी तो लिस्टर्स, इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूं हैं। तो सबसे पहले आपसे बारी बारी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक फेवरेट कॉफ़ी मग, इसको आपने ले लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा मैदा यानी कि फ्लोर, चीनी और साथ ही कोको पाउडर, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। अब स्टेप नंबर टू में आपने करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा मिल्क, बिल्कुल एक चम्मच ऑयल, ताकि बिल्कुल भी ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ऑयल का इनटेक ज्यादा कर देते हैं तो जो आपका केक है वो थोड़ा सॉगी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने एक चम्मच कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा वनीला एसेंस आपने इसमें यूज करना है, जो कि आपके टेस्ट को इनहेंस कर देगा। और इसको डालकर आपने अच्छी तरह से एक मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अब आ जाती है बारी हमारे स्टेप नंबर थ्री की, यानी कि सीक्रेट टिप की। इसके लिए आपने क्या करना है, चॉकलेट के बहुत सारे पीसेस करने हैं। और चॉकलेट के पीसेस करने के बाद आपने, आप कोई सी भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको पता हो कि घर में सब शौक से खाएंगे, वो चॉकलेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। या फिर अगर आप मार्केट से चॉकलेट नहीं लेना चाहते तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि आप किस तरह से चॉकलेट घर में बना सकते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है कि उन जितने भी पीसेस हैं चॉकलेट के, उसको इस बैटर के अंदर ऐड कर देना है आपने आराम से, तरतीब से। सो अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, यानी कि द फाइनल स्टेप। आपने क्या करना है कि जस्ट पॉप इट इनटू द माइक्रोवेव फॉर एग्जैक्टली 1 मिनट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और 1 मिनट के बाद आपने जाके चेक करना है, अगर आपको लगे कि आपका केक थोड़ा सा अंडर कुक है तो आप अपना टाइमर 1 मिनट से 2 मिनट तक बढ़ा दें। सो ये रहा आपका मिडनाइट मग केक, जो कि इतना इजीली, इतना फौरी तौर पर तैयार हो गया। जी तो लिसनर्स, देखा आपने कितने जल्दी से, कितना झटपट से हमने ये मजेदार सा मग केक बना लिया। कोई आपको डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स की नहीं जरूरत पड़ी, सिंपली जैसे आपने मैदा यूज किया, चीनी यूज की, कुकिंग ऑयल यूज किया, थोड़ा सा मिल्क यूज किया, वनीला एसेंस, और आपकी रेसिपी तैयार। टडा, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली वार्म, इट्स रियली चॉकलेटी, एंड इट फील लाइक अ हग इन अ मग। सो जरूर ट्राई करिएगा इस मजेदार से मिडनाइट केक को, और अपनी जो चॉकलेट क्रेविंग्स है, अपने जो मीठे की क्रेविंग्स है, उन क्रेविंग्स को इसके साथ दूर करिएगा।

0: और वैसे भी जब आपका दिल करे कुछ नमकीन खाने का बट हो कुछ लाइट सा, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स अ गार्लिक चीज टोस्ट. इट टेक ओनली 5 मिनट्स टू मेक. तो जी लिसनर्स, आप सभी से शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना है. आपसे हर स्टेप ईच एंड एवरीथिंग शेयर करती हूँ ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए और आप इस रेसिपी को इजीली बना लें. सो स्टेप नंबर 1 में थोड़ा सा सॉफ्ट बटर आपने ले लेना है. उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने ब्रेड की साइड्स होती हैं उसको आपने कट करके रखा था, आपने उन कट स्लाइसेस को इस बटर के अंदर डाल देना है. और इसके अंदर आपने चॉप्ड हुआ हुआ गार्लिक, थोड़ा सा हरा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स, इनको अच्छे से मिक्स करके एक मजेदार सा गार्लिक बैटर स्प्रेड बना लेना है. अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अपनी ब्रेड स्लाइसेस पर जो आपने कट करके साइड पर रखे थे उनके अंदर आपने इस बटर के जो बैटर जिसको आपने अच्छा सा स्प्रेड रेडी किया था इसको आपने ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है. अब आपने ब्रेड की दूसरी साइड पर ढेर सारा मोजरेला चीज उसको ऐड कर देना है और थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देना है, क्योंकि मोजरेला चीज इसको चीजी बनाएगा, नमकीन बनाएगा और ऑरिगेनो से टेस्ट आपका इनहेंस हो जाएगा. अब आती है बारी हमारे लास्ट और फाइनल स्टेप की. आपने क्या करना है, इसको तवे यानी कि आप फ्राई पैन में यूज कर सकते हैं, या फिर अगर फ्राई पैन में नहीं तो आप सिंपली तवा यूज कर सकते हैं. बिल्कुल लो हीट पर आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, इतना पकाना है कि जो आपकी जो मोजरेला चीज है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और ब्रेड नीचे से क्रिस्पी ना हो. तो टडा, आपकी ये रेसिपी भी बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो गई. जी तो लिसनर, जब आप इसको कट करेंगे तो आप फील करेंगे कि इसके अंदर जो टेंडरनेस है और साथ ही साथ जो चीज की फीलिंग है वो इसको बहुत ही ज्यादा इन्हेंस कर रही है. ये थी हमारी आज की थोड़ी डिफरेंट सी, थोड़ी यूनिक सी रेसिपीज, एंड आई होप लिसनर्स यू लाइक इट. अभी वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. मेरा दिल तो नहीं कर रहा लेकिन कमर्शियल ब्रेक में जाना जरूरी है. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापसी पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड देन आपसे पूछूंगी कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी और आपके फीडबैक को भी शो में शामिल करूंगी. सो चलते हैं इस ब्रेक की जानिब.
1: Commercial time.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आवाज की दुनिया में हम आपके साथ रिश्तों के सिलसिले बरकरार रखें हमारे साथ जुड़कर सुनिए हमें रोजाना सिर्फ फजा 97.1 FM पर

तो ये तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। बेसिकली ये ट्रैक न्यू ही आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू ट्रैक शो में शामिल कर दिया जाए। जी तो लिसनर्स, मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके, थोड़ा सा हट के। जैसे कि डेली बेसिस पे जो हम बातचीत करते हैं वो तो हमारी होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ नया, कुछ डिफरेंट बात किया जाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन चीज़ों के बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते, लोग इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं और इन चीज़ों को उस तरह से वैल्यू नहीं करते। जी जी तो लिसनर्स, क्या आप सभी ने ये चीज़ फील की है या ये चीज़ नोट की है या सिर्फ ये मेरे साथ होता है? तो अभी फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले की बात है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई एम नॉट हियर, बट नाउ आई एम हियर फॉर यू गाइस। सो वो ये थी कि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे। सो क्या आप सभी के साथ भी ऐसा होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वो तमाम तर लोग जो किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कि जब आपका एक एग्जाम हो या पेपर हो और इवन ऑल्सो कि आपकी तैयारी होती है अच्छी, बट स्टिल आपके ऊपर एक माइंड में एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज उस एग्जाम स्ट्रेस से रिलेटेड इस टॉपिक पे बात करें जिसको कोई भी बात नहीं करता और लोग इस चीज़ को उस तरह से देखते भी नहीं है, उस तरह से नॉर्मलाइज किया हुआ है। लेकिन आपने ये चीज़ फील की है कि वो स्ट्रेस हमें कितना अंदर से लोअर फील करवाता है, यानी कि आपकी तैयारी भी होती है, आप कुछ कर चुके होते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट सडनली अ सडन वेव ऑफ स्ट्रेस कम्स इन योर माइंड एंड सेज कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर सकोगे या आप भूल जाओगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर से भी पूछा जाए, क्या आप भी समटाइम्स ऐसा फील करते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हार्ड, कुछ डिफिकल्ट सा हो रहा हो एंड ऑन दैट मोमेंट आपके माइंड में एकदम से ये एक थॉट आ जाए कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, इवन कि आप अच्छे से कर भी रहे हो बट स्टिल आपको एक स्ट्रेस और एक एंजाइटी फील हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए। किस तरह से शेयर करना है, 01157100971 इस नंबर के जरिए से आपने मुझसे शेयर करना है कि क्या आप इस तरह का सोचते हैं या अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो किस तरह से उनको टैकल करते हैं। तो अच्छा, अगर पर्सनली मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ना जब भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती हूं तो इवन कि मैं अच्छे से याद कर रही होती हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट अ परफेक्ट स्टूडेंट बट आई एम नॉट अ लोअर टाइप ऑफ स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी मिडल पोजिशन में हूँ कि जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परफेक्ट होता है, यानी कि मैं टाइम से सब काम कर लेती हूँ बट उस तरह से वाओ इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अच्छा, जब मैं पेपर की तैयारी कर रही होती हूँ, इवन कि जब मैं पढ़ रही होती हूँ, तो इवन कि मेरे माइंड में जो फर्स्ट एक थॉट घूम रही होती है वो ये कि अच्छा कि लाइक मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी या फिर ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इवन तो सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद एकदम से मेरे माइंड में वो एक चीज़ आती है कि कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊँगी। सो ये जो तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा उस टाइम पर डीमोटिवेट कर रही होती हैं और मुझे इस चीज़ की तरफ पुश कर रही होती हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बट एट दैट मोमेंट मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को इनकरेज करती हूँ, खुद को दूसरे साइड पर लेके जाती हूँ और अपने माइंड में सडनली लाती हूँ कि क्यों नहीं, अगर मैं मेहनत करूँगी, अगर मैं उसको बार बार पढ़ूंगी या फिर मैं अच्छे से रिवाइज करूँगी तो मैं कर सकती हूँ। इसी तरह अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की कोई हर्डल, कोई डिफ़िकल्टी, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसी एक मोमेंट में आप क्या किया करें, उस ही चीज़ की पॉजिटिव साइड पर चले जाया करें। इस बात को मेरा करने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं उन तमाम तर लोगों से रिलेट करना चाहती थी, यानी कि उन तमाम तर लोगों को ये बताना चाहती थी कि जो लोग ये फील करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो क्या उनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी, स्मूथ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। सो आप सभी के लिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो फ़ौरन से उसी एक मोमेंट की पॉजिटिव साइड पर जाएं, खुद को पुश करें कि क्यों नहीं हो पा रहा, बल्कि हो पाएगा और मैं ज़रूर कर पाऊँगा। सो मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपने लिसनर्स के अंदर एक और पॉजिटिव वाइब को, पॉजिटिव एनर्जी को दौड़ाया जाए। सो इसके लिए ये मैंने बात की। चलिए चलते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं।

अच्छा, अगर हम बात करें इवनिंग की रूटीन की, तो मेरी इवनिंग की स्किन केयर रूटीन ये होती है कि जब मैं डेली बेसिस के अपने टास्क कंप्लीट करके जब मैं घर जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ अगेन बाय यूजिंग द सेम फेस वॉश। सेकेंडली मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पर जो नहीं है वही टोनर स्प्रे करती हूँ। टोनर स्प्रे करने के बाद फिर उसको मैं अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और 10 से 15 मिनट जब गुजर जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक मास्क रेडी करती हूँ और उसको अपने फेस पर, अपने नेक पर और इवन अपने हाथों पर अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि जो डेली सुबह से लेकर दिन तक जितना भी सन एक्सपोजर मैंने लिया है या फिर उस सन एक्सपोजर की वजह से मेरी स्किन बर्न आउट हुई है वो ठीक हो जाए, फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर आप उसको साथ साथ डेली बेसिस पर फिक्स कर देंगे तो कभी भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा।

0: अच्छा, अब उस मास्क की रेसिपी आप सभी से शेयर करती हूँ। तो मास्क में हमें चाहिए बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट्स, नंबर 1 मिल्क, नंबर 2 योगर्ट, और मिल्क आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको इजीली मिल जाए। एंड देन सेकेंडली आपने लेना है बेसन। बेसन के बाद थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक। अब टर्मेरिक, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनकी स्किन होती है सेंसिटिव, और टर्मेरिक की ज़्यादा क्वांटिटी उनकी स्किन में इरिटेशन पैदा कर देती है, जलन पैदा कर देती है। सो आपने क्या करना है, जस्ट अ टाइनी अमाउंट ऑफ टर्मेरिक ऐड करनी है इसके अंदर। सबसे पहले 2 चम्मच दूध, उसके बाद 2 चम्मच बेसन, और जस्ट अ टाइनी अमाउंट ऑफ टर्मेरिक। इन तीनों का अच्छे से आपने मिक्सचर बना लेना है। अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को अच्छी तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी ना ही ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो, बल्कि मीडियम सी हो। आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखना है, और 10 से 15 मिनट के बाद यू विल सी द रिजल्ट्स। आप उसको अच्छी तरह से रब करने के बाद अपने फेस से रिमूव कर दें। एंड देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको रिमूव करने के बाद अपने फेस को जब मैं देखती हूँ तो आई सी द विजिबल डिफरेंस। मुझे नज़र आता है कि जो पूरे दिन की डर्ट पोल्यूशन मेरी स्किन पर जम गई थी, स्टक हो गई थी, वो इस मास्क की मदद से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। तो लिसनर्स, मैंने सोचा कि डेली बेसिस पर मैं आपसे बहुत सारी ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, रेमेडीज शेयर करती हूँ, तो क्यों ना आज मैं आप सभी से अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ। अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, ड्राई नहीं है, ऑयली है बहुत ज्यादा, सो ये रेमेडी, ये स्किन केयर रूटीन आपके लिए बहुत ज्यादा अफेक्टिव रहेगी, बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगी। सो जितने भी मेरी फीमेल्स हैं विद अ ऑयली स्किन, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं कि ऑयली स्किन के बहुत मसले होते हैं। ऑयली स्किन में पिंपल्स भी जल्दी आते हैं, ऑयली स्किन ऑल द टाइम ऑयली ग्रीसी दिखती है, आप कभी भी फ्रेश नहीं दिखते। सो इन रेमेडीज़ को, इस स्किन केयर रूटीन को जब आप अडॉप्ट करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, तो यू विल सी द रिजल्ट्स। जी तो लिसनर, ज़रूर इस स्किन केयर को अप्लाई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको इसको अप्लाई करने के बाद जब आप डेली बेसिस पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्या विजिबल डिफरेंट रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो किस तरह से बताना है आपने मुझे, 0115710971 इस नंबर के ज़रिए, चूंकि ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो के अंदर एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। So let's take a short break and we will be right back after a very short break.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहां पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM। सीधा लिसनर्स, जैसा कि आपको और मुझे साथ में तकरीबन अब 2 घंटे करीब होने के थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं। ये नहीं कह रही कि टाइम ख़त्म होने वाला है, बट स्टिल ऐसा तभी होता है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से गुफ्तगू कर रहे हो और आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो, तो आप फील करते हो कि जब आप उससे बातचीत कर रहे होते हो तो आपको वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, टाइम फौरी तौर पर जल्दी जल्दी से गुजर जाता है। ठीक, कुछ इसी तरह से मैं चाहती हूँ आपका और मेरा रिलेशन भी कुछ इस तरह से हो, हमारा कनेक्शन भी इस तरह से हो कि भले फिजिकली हम एक दूसरे के करीब ना हो बट स्टिल इमोशनली कनेक्टेड हो। सो किस तरह से आप मुझसे यानी कि रेडियो फजा 97.1 FM से कनेक्टेड रह सकते हैं, सो उन तमाम तर लिसनर के लिए जिन्होंने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, या फिर अभी अभी कुछ ऐसे लिसनर्स भी हैं जो अपने काम में मसरूफ होंगे और अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, उन सभी लिसनर्स के लिए एक बार फिर से बताती चलती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 01157100971। जी हाँ, ये है हमारे स्टूडियो रेडियो फजा 97.1 FM का लाइव नंबर। सो आपने क्या करना है, इस नंबर को जल्दी से सेव कर लेना है और इस नंबर पे जाकर अपने नाम के साथ कोई प्यार सा पैगाम या कुछ अच्छा सा हमें लिखकर भेज देना है। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट radiofaza.com.uk को डेली बेसिस पर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार सुनने की खूबसूरत सी आवाज़ें मिलती रहें और मज़े मज़े के खाने सीखने का मौका मिले। जी तो लिसनर्स, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आई नो कि मेरी आवाज़ आज थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, बट कोई नहीं, चलता है, क्योंकि अब ये तो लाइफ का हिस्सा है। इंसान बीमार भी होता है और इंसान ठीक भी होता है। सो सम डेज होते हैं कि इंसान थोड़ा सा लो फील करता है और सम डेज होते हैं इंसान थोड़ा हैप्पी फील करता है, तो कुछ इसी तरह से आप समझ लें कि आज मेरे गले का थोड़ा सा सैड डे है, इसीलिए गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आवाज़ ऐसे अजीब भारी भारी सी लग रही है। जी तो मैं आपको बता रही थी कनेक्शन का तरीका, तो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने गूगल स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें। सो जी, अब बढ़ते हैं अपने शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, ऐसा सेगमेंट, उस सेगमेंट की जानिब जिसका आप सभी को रहता है बहुत ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि ये हमारे शो द डीवा डायलॉग का सबसे क्लासी और सबसे इंस्पायरिंग सेगमेंट है। व्हेन वी हियर द वर्ड डीवा, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एलिगेंस, स्टाइल और कॉन्फिडेंस। मगर आज जिस इंटरनेशनल आइकन की बायोपिक में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उन्होंने सिर्फ फैशन नहीं बनाया बल्कि फैशन के जरिए से अपनी औरतों को, फीमेल्स को आज़ादी दिलाई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी कोको शनेल, द वुमेन हु बिल्ड्स अ बिलियन डॉलर फैशन एम्पायर फ्रॉम एब्सोल्यूट

से तो लिसनर्स होप सो आपने इस होप सो ऐसे ट्रैक को एंजॉय किया होगा. बेसिकली इट्स अ ह्यूज कोलैबोरेशन बिटवीन टू पाकिस्तानी सिंगर्स एंड आई होप कि इस तरह के सॉफ्ट स्वीट गाने इसी तरह बनते रहने चाहिए, क्योंकि पर्सनली मैं इस तरह के म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. तो हम बात कर रहे थे हमारी आज की फेवरेट क्लासी आइकॉनिक डीवा की, यानी कि कोको

की। तो जी अगर आप सभी ने एक चीज नोट की हो या देखी हो तो आप सबको मालूम होगा कि आप सब ने शनैल नेम की बहुत सी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स देखी होंगी, बैग्स देखे होंगे, मगर क्या आप इस चीज को जानते हैं कि इस ब्रांड की जो फाउंडर यानी कि कोको शनैल, उनकी जो जिंदगी का स्टार्टअप था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग था। सो बेसिकली फ्रांस में पैदा होने वाली ये लड़की, इनका असली नेम कैप्रियल शनैल था, जिन्हें बाद में इन्होंने कोको शनैल में तब्दील कर दिया। तो जब ये 12 ईयर्स की थी तो उसी टाइम पर उनकी मदर का इंतकाल हो गया और उनके बाप ने इनको एक ऑर्फिनेज में छोड़ दिया। यानी कि आपको कैसा फील हो, इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी लड़की जिसका कोई भी नहीं हो, ना ही कोई उसका ब्लड रिलेशनशिप हो, उसने उस ऑर्फिनेज में ऑर्फिनेज के अंदर अकेले रहते हुए उन्होंने सिलाई कढ़ाई सीखी। अच्छा, उनके ऑर्फिनेज में एक ट्रेडिशन था, ट्रेडिशनल नहीं कह लो लेकिन लैक ऑफ डिजाइनिंग की, कि बहुत सारी जो लड़कियां थी वो सब एक ही तरह के पुराने लिबास पहना करती थी। और यहीं से कोको के अंदर एक आग जागी के उन्हें दुनिया को बदलना है। किस तरह से बदलना है? जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो हर तरह के डिजाइन किया करती थी। उनका स्टाइल इतना यूनिक और इतना अलग था कि पेरिस के बड़े बड़े घरों की औरतें उन्हीं से ड्रेसेस बनवाने आती थी, क्योंकि उनको उनके ड्रेसेस में कुछ यूनिक फ्यूजन, कुछ क्रिएटिविटी दिखती थी। और इसी तरह करते दिखते दिखते ही वो पेरिस की सबसे बड़ी फैशन डिस्ट्रिक्ट पर राज करने लगी। ये वो दौर था जहाँ फैशन सेंस बिल्कुल जीरो होता था, लोगों को बिल्कुल भी फैशन का कुछ मालूम नहीं होता था। उस टाइम पीरियड में कोको शनैल ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स को, न्यू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले उन्होंने अपना एक बिजनेस प्लान बनाया। अगर बात करें हम उनकी सर्विसेज की, रेवोल्यूशन की, तो उन्होंने, कोको शनैल ने दुनिया को जो दिया वो सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि एक रेवोल्यूशन भी था। औरतों को टाइट कॉर्सेट से आज़ादी, उसके बाद द लिटिल ब्लैक ड्रेस, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सर्विसेज में आती हैं। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जहां औरतों को ऐसे टाइट कपड़े पहनाए जाते थे जिसमें वो सांस तक नहीं ले सकती थी। होता है ना, हर एक दौर का ट्रेडिशन होता है, हर एक दौर का फैशन होता है। तो ये उस फैशन एरा की बात कही जा रही है यहाँ, कि जहाँ जब कोको शनैल एग्जिस्ट करती थी, यानी कि उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि आसपास इर्द गिर्द की जो फैशन सेंस है वो ये चीज़ कहता है कि लोगों को बहुत टाइट, बहुत फिक्स किस्म के कपड़े पहनने चाहिए। कोको ने कहा नो वे। उन्होंने मर्दाना कपड़ों, सूट और ट्राउजर से इंस्पायर होकर औरतों के लिए भी ऐसे कंफर्टेबल लूज कपड़े डिज़ाइन किए, ताकि आप अपने कम्फर्ट में रहें, ना सिर्फ आप अपने कम्फर्ट में रहें बल्कि खुलकर आज़ादी से सांस तो ले सकें। इमेजिन करें कि अगर आज के दौर में इस तरह का कोई फैशन हो या फिर इस तरह का कोई कल्चर हो जहां आपको बहुत ही ज़्यादा फिक्स, बहुत ही ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनने पड़े, तो यू विल फील कि कितना अजीब सा लगता है, इंसान को घुटन घुटन फील होती है। अच्छा, ये उस दौर में बहुत सारी और भी फीमेल्स थी, और भी लोग थे, बट उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन कोको ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और उनकी इंस्पिरेशन क्या बनी? मेल क्लॉथ्स। उन्होंने देखा कि किस तरह से मेल क्लॉथ्स खुले होते हैं, किस तरह से वो कंफर्टेबल होते हैं, तो कुछ इसी तरह से उन्होंने भी खुद के ड्रेसेस को इस तरह से कंफर्टेबल बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। अच्छा, इसके साथ साथ ये उस ईरा की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, जहाँ पर लोग ब्लैक ड्रेसेस को नहीं प्रेफर करते थे, और मोस्टली मेजॉरिटी का ये समझा जाता था कि जो ब्लैक रंग है वो सिर्फ अफसोस की निशानी है। लेकिन कोको ने एक लिटिल ब्लैक ड्रेस इंट्रोड्यूस करवाया और ब्लैक को दुनिया का सबसे क्लासी और हॉट कलर बना दिया। ट्रस्ट मी, ब्लैक इज़ वेरी ब्यूटीफुल कलर, ब्लैक इज़ वेरी प्रिटी, और मुझे तो हर चीज़ ब्लैक में बहुत अच्छी लगती है। मेरा पर्सनली फेवरेट कलर भी ब्लैक है। अच्छा, एक टाइम था जब मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर पसंद करती थी, इवन कि मेरी जो क्लोज़ेट थी वो सब ब्लैक कपड़ों से भर गई थी।
तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं जैनब, और भी तरह के कपड़े ट्राई किया करो, डिफरेंट कलर्स लिया करो। तो मैंने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया कि लाइक डिफरेंट तरह के कलर्स भी ट्राई किए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्लैक इज द फेवरेट कलर ऑफ माइंड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है ब्लैक। तो कोको ने ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था हमारी फीमेल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, कि ब्लैक कलर इज़ नॉट अ साइन ऑफ सैडनेस, ब्लैक कलर इज़ अ साइन ऑफ ब्यूटी। अच्छा, उन्होंने दुनिया को पहला एक ऐसा परफ्यूम बना के दिया जो किसी फ्लावर की खुशबू में नहीं था बल्कि केमिकल मिक्स था, जो पूरे दिन चलता था। आज भी बहुत सारे लोग परफ्यूम से यूज़ करते होंगे, डिफरेंट तरह की सेंट्स यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आप सभी को ये चीज़ मालूम है कि दुनिया में जो फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम था वो भी कोको शनैल ने ही सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो इस चीज़ का फुलफ़िल करता है कि जब आप कोई भी परफ्यूम अप्लाई करें तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो और 4 to 5 hours स्टे करें। अच्छा, इस दौर से पहले केमिकल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, इवन तो के लोग यूज़ करते होंगे परफ्यूम्स को भी, लेकिन वो क्या यूज़ करते थे, सेंट ऑफ रोजेज या इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको। लेकिन कोको ने केमिकल्स की मदद से हमें एक ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा बेस्ट परफ्यूम बना के दिया जिसे आज भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, उस टाइम पीरियड में, उस दौर में फीमेल्स किस तरह के बैग्स कैरी करती थी, मेजॉरिटी ऐसे बैग्स कैरी करती थी कि जो उनको हाथ में पकड़ने पड़ते थे। सो इसका डिसएडवांटेज ये था कि जब आप बैग को ऑल द टाइम हाथ में कैरी करेंगे तो आपके हाथ बिजी रहेंगे, कोई और चीज़ पकड़ नहीं सकेंगे। सो कोको ने इस चीज़ को फील किया और उन्होंने सबसे पहले ऐसे बैग्स इंट्रोड्यूस करवाए जो चेन के साथ होते थे, यानी कि आप सिंपली समझ लें कि ऐसे बैग्स जिनमें हैंडल्स हों या फिर ऐसे बैग्स जिनके साथ चेन्स हो, ताकि आप उसको अपने शोल्डर के साथ लगा सकें, इजीली कैरी कर सकें और यहाँ से वहाँ मूव कर सकें।

0: It's commercial time.
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK Events और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंघम, NG5 1EL।
2: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026, ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजल 97.1 एफएम के लाइव शो से जी मैं हूँ आपकी आरजे दी वन एंड ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलू राज की। सो बे हो चुके आप तमाम समातों को, नए लोगों का जिन्होंने आज और अभी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया प्लस चूज किया, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। और बस हमेशा की तरह पूछेंगे क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन। अगर ऑफिस में आपके साथ पड़ चुकी है बॉस की डांट से घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहे, कोई आज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाना चाहे तो पहुँचा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रोग्राम एक टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक के हवाले से जो है डिस्कस स्टार्ट की जाती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी कैसे है, नंबर बड़ा ही प्यारा है स्टूडियो का, लाइव व्हाट्सएप नंबर नोट करवाए देती हूँ 1157100971। इस खूबसूरत से नंबरों कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारे किसी और प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो सब आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। सर प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिल्कर एंटरटेनमेंट। और घर बैठी अवनी मुझे सुन रही है, बताएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही है। अगर कुछ लोग जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल ड्राइव करते वक्त ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ड्राइव करते वक्त ट्रैक प्ले किया जाए तो बहुत मज़ा आता है सुनने का उसको। लेकिन हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक के हवाले से जब प्रोग्राम में डिस्कस स्टार्ट की जाती है, बट आपकी फरमाइशों को भी पूरा किया जा सकता है, किया जाता है। बल्कि कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों। सबसे पहला ट्रैक मैं प्ले करूँगी आप सब के लिए। अब प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: Coke Studio, Season 15.
1: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतवी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, मेरा आपके साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। हमेशा की तरह मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी बातें छुपी होती हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो बातें आप तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन और होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन। बल अगर किसी खास पर्सन के लिए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें, वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत खास हो, तो मैं उसके लिए ज़रूर प्ले करूँगी, उनके लिए ज़रूर प्ले करूँगी। अभी के लिए इस प्रोग्राम में छोटे से मैशअप को शामिल करने पर फरमाइश आई थी इनकी, इनके 2-3 ट्रैक्स की फरमाइश आई थी, और आई डोंट नो इनका नाम क्या है, पता नहीं, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन खैर इसको सुनते हैं और इसके इस पर रहेंगे, आपसे मुलाकात मिलकर आपसे करेंगे और गपशप, ढेरों गपशप आप तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाएंगे और आपकी फरमाइशों को भी पूरा करेंगे। सो अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम में इस ट्रैक को सुनना है, इस फ्रेंडशिप को सुनना है, इसके इस पार मेरे आप दरमियान हाई लोग एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, और फिर कमर्शियल ब्रेक के इस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Radio station for people who love music.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are... Fazan 97.1 FM।
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: तू को जा मन को जा।
2: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस बाय उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात के तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 0771529779 और 0755253825। UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
3: Planning a wedding, reception or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
4: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
5: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
4: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
6: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao, pangde
7: pao. Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
6: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
7: ओहो, मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
6: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
7: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
6: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
7: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
6: हाँ जी, क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
7: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
6: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
8: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलू राज की। सवाल उसी के साथ साथ अब जो है वक्त जो है वो पता नहीं चला कितनी जल्दी गुजर गया, बट एक छोटी सी फरमाइश प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर देते हैं, फिर उसके इस बार चाहेंगे आपसे इजाज़त।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी आवाज
7: 97.1
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: Radio Fazan 97.1 FM.
10: Hit music. Back to back.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.
0: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा।
11: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं महसूस भी करना है, तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, आज किसी एक इंसान को बिला वजह मुस्कुरा कर देखिए, किसी को अच्छा लफ्ज कहिए, किसी को अहम महसूस करवाइए। यकीन माने खुशी तकसीम करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और आप दिल ही दिल में सोचें कि आपकी जिंदगी की वो छोटी सी खुशी कौन सी है जिसे याद करते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। रेडियो फजा के साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है अगर इसे महसूस किया जाए। अभी प्रोग्राम बाकी है।

0: It's commercial time.
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंगम, NG5 1EL।
2: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026, ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांदरात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात के तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG51EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 यूके का बिगेस्ट मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552-538250।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
7: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी वाज
8: 97.1
9: This is a public service announcement.
10: Everybody. The station
11: that plays
12: foot tapping music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पिज्जा
10: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
11: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
13: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
14: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांदरात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026, इश्को सुरूर की महफिल, कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट, बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May 6 PM टिल लेट, सिर्फ शॉपिंग नहीं पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका, फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
2: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
3: Planning a wedding, reception or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
4: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
3: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
4: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
5: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao.
6: Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
5: Meri biwi da visa ho gaya ji.
6: Oho, mubarakbad. Bahut jaldi aa gaya.
5: Sari naseeb di gall hai. Main local visa mahirin di madad layi si ji.
6: Unka naam hi bata de. Hame bhi kabhi zarurat pad sakti hai.
5: AMH solicitors. Hor kaun? ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਵਾਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
6: ਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਗਾ।
5: ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿੰਗਮ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਬੇਸਫੋਰਡ, ਨੋਟਿੰਗਮ।
6: ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਹੈ?
5: ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: We were shut like a jacket. So do your zip.
1: It's commercial time.
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त. कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह. बकरा मुबारक 2026 यूके का बिगेस्ट मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल. अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं. 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक. एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंगम, NG5 1EL. फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
6: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
7: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼
8: 97.1।
9: This is a public service announcement.
10: Everybody. The station
11: that plays
12: foot tapping music.
8: 97.1 FM.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स
14: You are listening to Radio Faza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।
1: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.

चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंग

0: चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.